आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लू से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों

0: को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad and at around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and the IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: गुर्तुको सुनाई Go Retro with Akashvani Telugu.

0: మన జనరంజని.
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान.
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण.
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध.
1: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
4: గుర్తుకొస్తున్నాయి గో రెట్రో విత్ ఆకాశవాణి తెలుగు.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलनाडु वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on Mental Well-being, Rural Development, Nature Conservation and Social Transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care, not-for-profit hospital. The founder of Tamil Nadu Vetrikaragam, TVK, actor-turned-politician, C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Nine ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were also present on the occasion. During his address after taking the oath, Chief Minister Vijay appealed to the people to remain confident about his government and said that he will enable smooth and transparent governance to all. After that, Mr. Vijay went to the Chief Minister's office at Fort St. George and signed the files declaring his taking over. He signed the files enabling 200 units of free power to every family.

आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस गंध स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं।

0: नीला देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट श्रृंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। श्रृंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना श्रृंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
1: देखो कंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
1: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैं क्यों माफ करूँ? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
1: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
1: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारिक, चमलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म।

0: रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे है, ऋषि कपूर भी डेटे है,
2: हीरोइने भी
1: हैं, हीरोइनों के भी डेटे है, और ठहर गए। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कार्टून पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर को दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करके मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर में डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सबके साथ। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूं, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से, वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: வெரி குட் மிஸ்டர் பாஸ்வாமி நாராயண. कहा कि भाई आप, हमें 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ, मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने, तो मेरे को पाली हिल पे हूँ, वहाँ पे आए वहाँ पे, तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि ये जी के पास में जाता रहा, तो ऐसे अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा अभी तक करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूंगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटुन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी,
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी ने कहेंगे नहीं, उनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं। इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था, इस तरह कि एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसने,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे, उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: फिटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, उनकी इजाजत से बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहां पर बैठा करते थे, रमन, राकेश मेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा,
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: ज्यादा हो, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछले पिक्चर में, तो उन्होंने 10 लाख दिए थे। तो उन्होंने 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने उन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: तो 5 लाख मैंने

0: इससे कह दिया था, रवि जी से कहा था कि मैं उतनी पैसों में गाने में फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब तब उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, मुझे क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर,
1: इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स। तो होगा बोले, अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं है।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप
0: कुमार सर, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, तो कर लो, मान गए, यश जोश की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है जो भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समुंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे, क्या बना वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग। तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया। उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हो उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा, उनका रेट भी आधा हो गया, वो भी छोटे थे पिक्चर लेने, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बनाते वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को सुना दूं
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरी सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन लोगों ने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोड़ को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने उसकी कपूर का डायरेक्टर हमारा फॉरन में चला गया, जो देव साहब ने भंजा क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉट, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी उनकी, से जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो मैंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ, तुम यार अपने दोस्त हो,

0: तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34/3 से शुरू करके पिक्चर। मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से 5 मिनट तक सुनाते, तो फिर रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो इतनी देर सुन सकता हूँ, इतनी जो भी उन्होंने सुना है। उन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो थोड़ा सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आए, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे। कई बार बोलते थे यार तो अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला कर दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मेरे पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करने का, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुक्कर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप में,
1: बहुत बड़े मेकअप में, मेरी फिल्मों के मेकअप में वो थे। और जब मैंने नूरी की हम प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुक्कर का भी शेयर था 5%।
0: बाबा
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% भूषण राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो यश जी ने 10% करवा दिए, क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% देर नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश मल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी जुक्कर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब
0: जी। जी जी गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है। वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले लूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी कि वो कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना, या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
0: प्रदीप को लेके,
1: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुक्कर ने
0: दिलीप साहब को बता,
1: दिलीप साहब को बता दी।
0: ओहो, गजब।
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओ, क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो वहाँ के थे, पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एप्टाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी, जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
0: अच्छा
1: जारा
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, और तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उनसे बैठूंगा पूरा, मुझे क्यों चीज पसंद नहीं आएगी मैं कहूंगा। कहा जी वो ऐसे सुनील जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की,
0: और इस तरह दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में
0: ऐसा ही होता था,
1: एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप, आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता हूँ।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दी,
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी,
1: तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई।

0: लेट है।
1: ओ,
0: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ फिर आ जाओ। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन था, आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
1: जी,
0: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक था ना फुल स्क्रीन परफॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेट है, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुपी पिक्चर, मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पैर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते उनको बोलते ये बात, वो सोचे अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी अभी रिलीज हो गई, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमने सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बात,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय होगी। दोनों खुश थे और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके है, बोले 100% ओके है।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब मालिक आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहां से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहां पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहां रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लग है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को यह कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी, मतलब अगली पिक्चर में देखिए आप संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह था हमारे फिल्म में भाग्य सर्कमस्टांसेस एक्टर्स का वो। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूंगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो छोटे चलो जाओ आते हैं चलते शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग होके जहाँ पे बोला जो जिस तरह लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की।

0: क्या हुआ था, डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहले कर, फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी
0: अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: శ్రోతలు ఇంతవరకు సినీ గీతాల కార్యక్రమం సినీ ప్రజని విన్నారు. ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు, 6 గంటల 5 నిమిషాలకు ఆంగ్లంలో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి 6 గంటల 10 నిమిషాలకు ప్రాంతీయ వార్తలు, ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి 6 గంటల 20 నిమిషాలకు సంస్కృతంలో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है.
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं. श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी. प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई. प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है. श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया. तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है. राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की. नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया. साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है. एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी. एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी. एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए. पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी. विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी. सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revant Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the center, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour.
1: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
2: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibhen Patel administered the oath of office in secrecy at the ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. Former BJP state president Bhupendra Chaudhary and BJP leader Manoj Pandey were inducted as cabinet ministers. State ministers Ajit Pal Singh and Sumendra Tomar were promoted and given independent charge. The founder of Tamilaga Vetri Karagam, TVK actor turned politician C. Joseph Vijay has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office in secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said the central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of people. He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resources deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimum loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Vice Admiral Sanjay Vatsyayan has been appointed as the next Flag Officer Commanding in Chief of the Western Naval Command headquartered in Mumbai. He will take charge of one of the Indian Navy's most strategically important commands responsible for safeguarding India's Western Maritime Front and key sea lanes in the Arabian Sea. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants have set a target of 204 runs for Chennai Super Kings at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. In reply, Chennai Super Kings were 60 for 1 in 4.4 over when reports last came in. Earlier put into bat, Lucknow posted 203 runs for the loss of 8 wickets in their allotted 20 overs. And with that, we end this news bulletin.
3: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 6:10 ఇప్పుడు తెలుగులో ప్రాంతీయ వార్తలు. ముందుగా వాణిజ్య ప్రకటన.
4: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं.
5: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ

0: मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी बार आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल

0: कैरिबियाई देशों की दो दिवसीय यात्रा संपन्न हुई।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज।

0: Senior broadcaster RJ Simran looks back to some exciting times.
1: अच्छा रेनबो के पहले रेडियो का मतलब था सोबर फॉर्मल एंड देन बाय अर्ली 1993 केम एफएम रेनबो जैसे कि राज कपूर की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में रणबीर कपूर की कलरफुल एंट्री हो गई हो वी मेड अ ग्रैंड डेब्यू एज रेडियो जॉकीज बिकमिंग द क्रेजी पैशनेट पायनियर्स ऑफ दैट एरा. We were not just hosting shows. We were inventing a language which India had never heard before. FM
0: is ready for you. AIR has been playing on for 9 decades now, changing its beat with the times. In 1969, Yuvavani.

0: ये आकाशवाणी है। रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam,

0: श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
0: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana, was born into a musical lineage. He began the art of veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
0: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampi Holi and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas ne apne veena vadan ki shuruaat raag gola mein Mysore Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain jo aadi taal mein nibadh hai.
0: Vidwan D. Srinivas begins his veena recital with a composition of Mysore Vasudevachar in the raag gaula set to aadi taal.

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was Taniyavartanam played on mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on ghatam by Shri Yam Chandrakant.
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास concludes his Veena recital with a composition of Sadashiva Brahmendra in the rag Ahir Bhairavi set to Aditaal.

0: इसके साथ ही आज की रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी

0: कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।